0: संख्या से सिर्फ दूसरा संख्या पे कैसे
1: चौदह का आने दूसरा संख्या
0: कैसा सुशांत सिंह का हाल है
2: कैसा
0: सुशांत सिंह का हाल सिक्स पैसे सवा आगे पहुंचा फोको आगाज किया नहीं तैयार
2: Enfin, les 465, on va tenter de recontacter la compagnie d'alarme, c'est eux qui ont les coordonnées.
0: 465,
2: 450, 465.